0: दिले पाँव भांगिया जाए
1: आयरे पाँव भांगिया जाए
0: आयरे पाँव भांगिया जाए
1: आयरे पाँव भांगिया जाए
0: ऐ ओपर दिखे थुथु दिले निजेर मुखे थुथु पड़े चोख बुझिया लम्फ दिले पाँव भांगिया जाए
1: आयरे पाँव भांगिया जाए
0: आयरे अति बड़ होइले पड़े धड़े पड़िया जाए अरे अति छोटो थाकले आबार छागल मुइरा खा।